0: app. Metro Plus. Your connect.
1: One is perfect for a solo. With two, you can play doubles. The more the merrier. How about a quartet? You could even form a basketball team. How many children should you have? The choice is yours. Be sure to plan ahead and plan it well. Call the Family Planning Association of Hong Kong on 2572-2222. It's my life. It's
2: now or never. Metro Plus AM 1044 presents John Bon Jovi on Life.
3: Life is for the living. You have to make the most of it.
2: On Family.
3: Live your life with your family, with your friends, with your music. But always live your life without drugs. Because living your life with drugs means you have no life at all.
2: Life with drugs. No life at all.
4: This program is brought to you by Home Affairs Department. The views expressed within this program are that of the host and their guest and does not necessarily reflect the views of this station, Metro Plus AM 1044.
5: Namaste, Sasriya Kaal Salam. Kiddaon ji sare vadiya, paaji bohut vadiya. Aaj hai ji 29 May 2026 shuru karte hai ji hamara show. Aaj hai hamare paas sirf 4 announcement. To kam announcement hai, 2-3 gaane extra lag jayenge. तो पहला अनाउंसमेंट है जी ब्रेस्ट अवेयरनेस एंड ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन. हांगकांग में महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर. हर महिला को अपने ब्रेस्ट के नॉर्मल लुक और फील के बारे में पता होना चाहिए. हमेशा ब्रेस्ट अवेयर रहो. कोई भी अनयूजुअल चेंज दिखे तो तुरंत ध्यान दो, जैसे ब्रेस्ट में लंप, साइज या शेप में फर्क, निप्पल अंदर की तरफ खींच जाना, स्किन का टेक्सचर बदल जाना. अगर ऐसा कुछ भी लगे तो जल्दी डॉक्टर से मिलो. ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी पकड़ लिया तो जिंदगी बच सकती है. प्रिवेंशन के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ, रेगुलर एक्सरसाइज करो, हेल्दी वेट और वेस्ट रखो, अल्कोहल बिल्कुल छोड़ दो. ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाइए www.cancer.gov.hk/breastcancer. अपना ख्याल रखो. ऑलराइट, आते हैं जी हमारे पहले रिक्वेस्टेड गाने पर. दिस सॉन्ग इज रिक्वेस्टेड बाय एन एनोनिमस पर्सन. गाने का नाम है जी वाई एंड द नेम ऑफ द सिंगर इज निर्वैर पन्नू. सो एंजॉय द सॉन्ग.

एंड वेलकम बैक, आते हैं जी अगले अनाउंसमेंट पर. दिस इज चाइल्ड प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज एंड डोमेस्टिक वायलेंस एंड पॉजिटिव थिंकिंग. घर की हिंसा सिर्फ बड़ों को नहीं बल्कि बच्चों को भी बहुत नुकसान पहुंचाती है. ये बच्चों के पर्सनैलिटी और डेवलपमेंट को सीरियस तौर पर ख़राब करती है. बच्चे कन्फ्यूज और हेल्पलेस फील करते हैं और कभी कभी वो भी वायलेंस को प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके समझने लगते हैं. वायलेंस से कुछ नहीं सुलझता, ये सिर्फ परिवार को तोड़ती है. अपने और अपने बच्चों को डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार मत होने दो, अभी मदद लो. सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की हॉटलाइन पर कॉल कीजिए 2343-2255 पर. ऑलराइट, बढ़ते हैं जी अगले रिक्वेस्टेड गाने पर. ये सनी ने मनी के लिए रिक्वेस्ट किया है गाना. गाने का नाम है जी एवरीबडी हर्ट्स बाय सिद्धू मूसेवाला. एंजॉय द सॉन्ग.

0: ਕਿ ਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਏ ਚੁੱਪ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਏ ਲੱਗਦਾ ਏ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲਵਿਦਾ
1: And welcome back. Aate hain agle announcement par. This is prevention of seasonal influenza, COVID-19 and other respiratory illnesses. Is season mein alert raho. Influenza, flu, COVID-19 aur dusre saans ki bimariyan abhi bhi chal rahi hain. Apni personal hygiene aur ghar parivar ki safai ka khayal rakho. Khansi ya chheenk aaye to tissue se muh aur naak ko dhak lo. Haath ko liquid soap aur pani se kam 20 seconds tak acche se dho lo. अगर तबीयत खराब लगे तो मास्क पहनो और तुरंत डॉक्टर से सलाह लो गवर्नमेंट का 2025-26 सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है हर साल फ्लू का वैक्सीन लगवाओ जितनी जल्दी उतना बेहतर जो लोग एलिजिबल हैं उनको फ्री या सब्सिडाइज्ड फ्लू शॉट मिल सकता है कोविड-19 अभी कम है लेकिन हाई रिस्क वाले लोगों को बूस्टर वैक्सीन टाइम पर लगवाना चाहिए जैसे रेजिडेंशियल केयर होम्स में रहने वाले 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग 50 से 64 साल के जो क्रॉनिक बीमारी से पीड़ित हैं इम्यूनिटी कमज़ोर लोग जो 6 महीने से ऊपर हैं और प्रेग्नेंट महिलाएं ज़्यादा जानकारी के लिए सेंटर फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन की वेबसाइट पर जाइए www.chp.gov.hk अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें ओके आते हैं जी हमारे अगले रिक्वेस्टेड गाने पर this song is requested by Manjot Gill and the name of the song is Off-Road by Khan Benny aur ye gana jo request kiya hai is for Amrit and Bachi enjoy the song

एंड वेलकम बैक गाइस, आते हैं जी हमारे आखिरी अनाउंसमेंट पर। ये हमारा चौथा और आखिरी अनाउंसमेंट है। दिस इज अपील फॉर वोटर रजिस्ट्रेशन। अपने कम्युनिटी के मेंबर होने के नाते आपको अपना सिविक राइट यूज करना चाहिए। वोटर बनने के लिए अभी रजिस्टर कीजिए। अगर आपकी उम्र 25 सितंबर तक 18 साल या उससे ज्यादा है और आप हांगकांग के परमानेंट रेजिडेंट हैं और यहां रेगुलरली रहते हैं तो आप इलेक्टर रजिस्टर करवा सकते हैं। आप 2 जून तक अपना एप्लीकेशन इजीली आई एम स्मार्ट ऐप से कंप्लीट कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरकर ईमेल, पोस्ट या फैक्स से भी एप्लीकेशन भेज सकते हैं। फॉर्म आई एम स्मार्ट ऐप में vr.gov.hk वेबसाइट पर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस में, पब्लिक हाउसिंग एस्टेट्स के मैनेजमेंट ऑफिसेस में और रजिस्ट्रेशन एंड इलेक्टोरल ऑफिस में मिल जाएगा। अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड वोटर हैं तो अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं आई एम स्मार्ट ऐप या vr.gov.hk वेबसाइट से। अपना रेसिडेंशियल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर भी वहीं से अपडेट कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए vr.gov.hk वेबसाइट पर जाइए या रजिस्ट्रेशन एंड इलेक्टोरल ऑफिस के हॉटलाइन पर कॉल कीजिए 2891-1001। आप अपने लोकल सपोर्ट सर्विस सेंटर्स में भी जा सकते हैं। अभी एक्शन लीजिए, अपने कम्युनिटी के इलेक्टर बने। ओके, आते हैं जी अगले गाने पर, अगले रिक्वेस्टेड गाने पर। दिस इज रिक्वेस्टेड बाय अमृत गिल। इन्होंने लिखा है, हेलो कैन यू प्लीज प्ले नॉन स्टॉप बाय खान बेनी फॉर बाची एंड A1। So this is Non-Stop by Khan Benny. Enjoy the song.

0: एंड वेलकम बैक गाइस, आते हैं जी हमारे अगले रिक्वेस्टेड गाने पर। ये ब्रार सिंह ने गाना रिक्वेस्ट किया है और गाने का नाम है जी ओही नंबर चलदा बाय सिपी गिल एंड इट इज फॉर नुमन खान जुर्दान। ओके, सो इन्होंने नाम तो बोला नहीं है किसके लिए डेडिकेट किया, बट इन्होंने रिक्वेस्ट किया है गाना। सो एंजॉय द सॉन्ग, दिस इज ओही नंबर बाय सिपी गिल।
1: वेस्टर्न पे हिंदू, वेस्टर्न पे हिंदू
2: डरा कर लोगों को पहुंचता है जिस...

0: एंड वेलकम बैक गाइस. अगला गाना रिक्वेस्ट किया है शेर यार खान ने. स्विचिंग लेन्स इज द नेम ऑफ द सॉन्ग बाय आर्टिस्ट तेगी पन्नू एंड सुखा. रिक्वेस्टेड फॉर हिज ब्रदर चीमा जे फ्रॉम स्टैनली. एंजॉय द सॉन्ग.
1: This nigga tripping. What he looking like a sucker?

एंड वेलकम बैक गाइस, बढ़ते हैं जी अगले रिक्वेस्टेड गाने पर. द सॉन्ग इज रिक्वेस्टेड बाय योगी जट. गाने का नाम है जी पित्तल बाय सिद्धू मूसेवाला. एंड इट्स फॉर अमरीका बाई पठान, हैरी, नोमी ताइलो, पंकज, अरुण हरियाणा एंड वडा. सो एंजॉय द सॉन्ग.